0: संत भोग भिक्षा कह करे नै तिप्तावै खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मरोर्थ बिरते सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए वट भागी किसै।

0: छुटै।
1: संत के दुख सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए।
0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सोबा ते हीन।
1: संत के अधिक रखे न होए, संत के दुखन खान प्रभु होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर।
1: संत के दुखन तेग मुकावे, संत के दुखन काल दूर होवे।
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुख

0: पद बीच ते टूटे संत का दोखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दोखी को ध्यान परमाइए संत का दोखी उजड़ पाइए
0: संत का दोखी अंतर ते थोथा ज्यों सांस बिना मृतक की।

0: सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवे।
0: संत के दुखी की पूजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा।

0: नाम के तारे पुरिया सा पवन, नाम के संग उतरे सुन सरवण।
1: कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए।
0: रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।
1: सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माय समाणी।
0: सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत
1: सत करणी निर्मल निर्मली। जिसे बुझाए तिसे सब

0: पुरख भगवान
1: सब कुट मुक्त मुख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: बलि सो करनी शोभा तनवंत हृदय बस

0: पते।
1: जब कार्य कछु न दिसते ता पाप पुण तब कहते होता।
2: जब तारे अपन सुन समात ते वैद रोग के संत मात।
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जावत तब हरक सुख को किसे व्याप्त।
2: जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसोवत परम।

0: तवा निकट कम कहिए दूर आपे आप भरपूर
1: जिस आप जनाए नानक तिस जने आप बुझाए।

0: बुरा औरे कहो किने कछु करा।
1: आप ला कछु तत नीके आपे जाने अपने की की।
0: आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संग राच।
1: ताकि गत मत कही न जाए दूसर होए कसो जी पाए।
0: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए आ मिलाए लहे प्रभु सोए।
0: अंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत।
1: तान तान।

बंधन कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाई जिन जीते पंच बेकार, तीन संतन का वंदना।

सुन मंडलिक जोगी वैसे। वो अवस्था बयान कीती हुई है गुरु नानक देव महाराज जी ने, जदों ये हिरदा परमात्मा दे नाम दे विच जुड़ गया, जदों समाधि लग गई, लीन हो गया, सुन मंडल विच चल गया जिथे कोई विचार नहीं है, निर्विचार दी अवस्था है, सहज दी अवस्था है, मन भी टिकया होया है, तन भी टिकया होया है, कोई फर्क ही नहीं रह गया। बूंद समुद्र दे विच समा गई, समुद्र दा ही रूप हो गई, हुण कोई फर्क नहीं रह गया, मेर तेर मुक गई, सारा कुछ खत्म हो गया, हुण सिर्फ परमात्मा ते परमात्मा दा प्यारा है, लीन होए बैठे ने। ये अवस्था कदों बनती है? जदों हिरदा नाम रूपी खजाने नूं, नाम रूपी रतना नूं चुगदा है। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरना।